0: अहिले बसन्त तिलकसित प्रीति लाएँ, श्री पञ्चमी लहरमा जब गीत गाएँ, प्यारो बसन्त ऋतुमा तब मीत लाएँ, मैले बिहान पखमा नवज्योति पाएँ, अहिले बसन्त तिलकसित प्रीति पाएँ। यो भावनाका साथ यो कवितालाई मैले यहाँ विश्राम गर्छु।
1: हेलो बाउसी हजुर, ल ऊ त डाँडा थुम्को मिलाइदिनु त, थुम्को रोपारलाई गाह्रो हुन्छ के?
2: यसपालि त छोरी माइती मिलेर एकदम रमाइलो गर्नुपर्छ, अर्को साल के हो के हो। ए साइली ए माइली, छिट्टो मुन्टा न छिट्टो मुन्टी।

0: Radio Rebora Malogit, Sika Notema, Rumal Gojima, Manastalagi, anybody?
1: As a Goridio Kansa Boida, Sika Notema.
0: But I'm Racha, Melina Raiko, me to me to swear, them Surilus or Sir Katagata, one living down the Venice, and they hassle gas like
1: down on the slide.
0: Just a lax, sir. Samir Karel, one penny of a Palton Cosadation, Chai, Melina Baini, as the Miruna Magarano Paikutu, Kyo Jelarko, 60th birthday. मानी बनी बीजी हैं बड़ी स्कूल खाने बालों का बर्थडे सेलिब्रेशन बाइको थियो वहाँ से भांजी होने उधर आया था या यानी कि हम लोग की ओजेलार का सदस्य को सुपुत्री है ना इलेक्ट अखिली वहाँ संग निके लामो कुरा क्या निभायो है ना मीठो भाषण पनी दिनों बाबा नहीं धन्यवाद दिनों बाबा वहाँ ले भाषण बंदा पनी है ना